सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त पए, जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो, त्याया जी, तिन का पो सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तप हैं जप हैं बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जे वड अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निःचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करह सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंढा साई। जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना ही सोई जन जाना, हर गुण सद ही आख वखाना। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरण पहिल निवासा। पानी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चाल। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हो जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जान्या हर राया।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दर रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम काबहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बस है मोरो परिवारा, सेवक सिख सब है करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करया, सब बैरन को आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन सुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरया, मरण काल का त्रास निवरया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जजू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताही हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पुछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पुछाना, कट कट के पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तर्थ तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणकाता।
जे अस्तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रच्छा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तन कुमह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा स्व सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताहे उबारा

सर्व ठोर मोह हो सहाय दुष्ट दुख ते लेहो बचाय। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन शुभ राता। केल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जब पहे दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो यह सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई को कह। चौपई संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस फुन तीन कह जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहें हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्द हो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द

मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दियां एह वडियाइयां। कह नानक सुनहो संतो, शब्द तरोह प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सपागै, घर सपागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को, से नाम हर कह लागे। कह नानक तह सुख होवा, तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भए सरसे, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। ताल विच तिन वस्तु पईयो,

नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाउ सतगुर से तीरतिया दरगह पाइय ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो यह वत दे जग मह उत्तम कर।

पार जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहि बिदारियन। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारका

सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। धन धन साहिब गुरु नानक देव जी दे ज्योति ज्योत दिहाड़े से धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन दरबार दी हाजरियां भर के बख्शां लारी परम सत्कार जो सतसंग जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी विपागर जी अरदास तो उपरंत आप जी ने बड़ा सुंदर हुक्मनामा सरवण किया है। गुरु कृपा करे सानू उस उपदेश से चरण की समत बख्शी। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का अवतार 15 अप्रैल 1669 ईस्वी होया सी। पिता मैता कालू जी दे ते माता सेवता जी दे घर राय भोएं दी तलवंडी दे विच, जिस नूं हुण आपां ननकाणा साहिब आखदे हां, ते उहनां ने ज्योति ज्योत समाया है जी 22 सितंबर 1539। धरती सी उह करतारपुर साहिब दी, उहनां दी पवित्र बाणी दे 974 शब्द धन धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज ने जी। उन्हां ने अंधविश्वासी ते कर्मकांडां नूं खत्म कर ली और सानू उपदेश कीता है, क्योंकि अजे भी असी कर्मकांडां च जा रहे हैं। कोई जठेरियां नूं पूजी जांदा, कोई मड़ियां नूं पूजी जांदा, कोई कुछ करदा, हाँ जी। ते फिर इस करके गुरु कृपा करे सानू उन्हां दे जो सानू उपदेश दित्ते ने उन्हां दे चलिए, ते नाल उन्हां ने सानू नाम जपो, वंड के छको, ते धर्म दी किरत करो ते तीन सुनहरी सूल भी दित्ते ने। सब तो महान काम किया उन्हां ने, सो सानू तीन सुनहरी सूल दे के उसे ही संबंध विच आपां दसवंध भी कढ़दे हां। सो बेनतियां हुण सूचनावां दसवंध कढ़न लई बेनती है हर रोज़ की तरह नॉर्थ ते साउथ हाल वास्ते। नाल नाम की गल आपां कीती है, आप जी ने गुरु की कृपा लैनी शुरुआत दे पर हरी सहज पाठ करी आरंभ कर देने, ताकि उस आपां उस दे संबंधित संबंध शुरुआत दे भरे वास्ते फिर अरदास करी जदों समाप्ति होवे। संगरांद 17 अक्टूबर नूं हैगी जी, वह भी नोट कर लो। ते नाल दो तीन सूचनावां, एकदम जो स्कॉलरशिप रखे आ कमेटी ने देने काफ़ी, इंजीनियरिंग टीचिंग बहुत डिग्रियां चार जो चार चार साल वाली बच्चों ने करनियाँ वह भी, तो सारिया के वास्ते, तो नर्सिंग के एक साल के कोर्स जोड़े उन्होंने वास्ते भी। बीजेपी कैक्ट जो है वह उसकी पढ़ाई के अनुसार देनी दिती जानी है। सो सब नू जिहड़े बच्चे हाई स्कूल कर चुके ने उन्होंने बेनती है उन्होंने माता पिता नू कि वो सारे उत्साहित कर बच्चों नू अपने खासा सॉरी गुरु घर की वैबसाइट पर जाके सैनल दे गुरुद्वारे की वैबसाइट पर जाके तो उत्थे सारा कुछ हैगा। एप्लीकेशन भी नाल होर डाकूमेंट कि लाने ने वो ला के वो एप्लीकेशन अपनी जी भर के डॉक्टर गुरिंद्रपाल सिंह जी नूं 15 अक्टूबर इस महीने 15 तो पहला दे देन। एक बार फिर मैं दस दिवा हो कि उन्होंने वैबसाइट से जाना हैगा सैनोजे गुरुद्वारा डॉट ऑर्ग से उत्थे फिर स्कॉलरशिप वाले पास चल जाना, उस तो सारा कुछ मिल जाना आप जी ते उस तो लाभ उठाओ, जबकि आपां हैल्प मिलती है कि उन्होंने ले जाए वो फिर। ते बाकी मैं दूर की सूचना कर लवा हूँ कि 8 नवंबर नू है बंदी छोड़ भाव दिवाली, जिस वास्ते आपां काफ़ी मक्खन चाहिए। सो वो भी दूजा एक सलैब वाला हो, एक पाउंड वाला, एक सलैब वाला, ताकि कर्म करन वेले सौखा रहिंदा। बहुत परिवार हर साल उस सेवा करते ने मक्खन की, इस साल भी उन्होंने बेनती है कि वह जिन्हें भी लिया सकते हैं एक पेटी या दो पेटियां, ते नाल आटा भी प्रसाद वाला वो भी चाहिए अपन। तो बाकी दस्त भी चाहिए, अपन कोशिश करिए कि इन दो चीज़ों से
ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਆਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਤੋਂ ਜਥਾ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। 8:30 ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: Tanu.
1: वाहिगुरु साहिब जी देखन को मुस्ताक मुख के जे हतो तनी फिरदा कित हाल जा डिठम ता मन त्रपया गुर पूरा जिन सिमरिया

कर जियावहिं रास। वाहे गुरु साहिब जी, एक दूजे भौ लख होहिं, लख होम लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। एत रहा पत पवड़ियां,

जिंदगी ने टुट दे जिस दे आधार ते सारी बाणी सतगुरां ने जप दी उचारण कीती केव कूड़ै टुटै पाल। एक कंध झूठ दी जिंदगी विचों किवें टुटै। हुण देखो अंदर ही है मनुख दे सब कुछ। मेरी बेनती है दीवार है विच मिथ लो। मिथन दा मतलब है जदों अध्यापक ने भी कोई मैथ दा मसला हल करना होवे ना ते ओ कहिंदा बच्चे ओ मिथ लो शाहूकार कोल इन्ना धन है। आपां भी ये मसला मिथ लईए। मन लो कि इस जीवन विच ही रब है, क्योंकि मनना की गुरबाणी ने बार बार कहा कि तेरे अंदर है घट घट मैं हरजू बस उन्हों मिलना। हुण सज्जे पासे समझो तेरे रब है। सज्जे पासे की है जी

मैं उदय रूप हो गया। भवक बीज ही नहीं बल्कि होरना रब दे बंदिया ने भी ये बचन उच्चारण कीते रबी बाणी जिवे नाम दे भी बचन कर दे नामे नारायण कोई हुण फर्क नहीं रह गया नाम दे विच ते नारायण दे विच कोई फर्क नहीं मैं उदय रूप हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिल है सारंग पानी राम कबीरा। पहला राम ते कबीर असी दो सी राम जिदा मैं चिंतन करदा सी मालक परमात्मा ते कबीर दो सी असी तू तू करन नाल एक किदा हो गए राम कबीरा एक वै कोई ना सका पहचान नहीं कोई पहचान नहीं कर सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी ये रहस्य बयान कर दे अपनी जन्म कथा लिखन लगे विचित्र नाटक दे विच जिक्र कर दे चित ना भयो हमरो आवन मेरा जी नहीं सी करदा इस दुनिया ते आउण लई कारण दाता वड्डे वड्डे देवी देवते भी तरस दे नहीं कि मनुखा दे प्राप्त होवे। तुसी क्यों पता किन्ना प्यारा अगला भजन कर दे गुरुदेव चुभी रही सुरत प्रभ चरण मेरी सुरत प्रभु चरणा विच लगी हुई सी इसलिए मेरा चित नहीं कीता इस दुनिया ते आमन फिर भी ज्यो त्यो कर प्रभ मोहे समझ आयो इम कह के ए लोक मेरे मालक ने प्रभु ने मैनु जिवें किवें करके समझाया ते इस दुनिया विच मैनु भेजिया। इस शब्द अंदर सवैये अंदर सतगुरां ने ए भी वचन कीता कि मेरा चित नहीं सी करदा क्योंकि मेरा मिलाप मेरा संबंध पक्का जुड़िया होया सी निरंकार नाल परमेश्वर नाल नहीं सी चित करदा। हुण बाबा कबीर जी भी ते ही दसना चाहुंदे ने कि मेरा चित भी निरंकार नाल जदू जुड़ गया अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिल है सारन पानी राम कबीरा इको कोई ना सकै पहचान नहीं कोई कर सकता। ए तरा ए जड़ा राह है ना विथ पै चुकी है ए विथ नू राह नू तय करन दे लई पति परमेश्वर दिया जड़िया पौड़िया ने चढ़ सकी दा जदों करते दा चिंतन कर दिया कर दिया कर दिया दो तो एक हो जाइए ताए मार्ग तय हों। सुन गल्ला आकाश की कीटाएं आई रीस जड़े रीस ही कर देने जिवें बाबा फरीद जी का एक बचन है कि मान सरोवर दे विच कुछ हंस तैर रहे सन तरदे हंस तर सकते चुभी ला सकते ने पर जदों बगलियां दी डार मान सरोवर किनारे आके बैठी ना उन्हें देखिया कि साड़ी जाति दे लगते ने असी भी तैर रहे हैं उन्होंने छलांग मारी बाबा जी कहिंदे उन्होंने तैरना आंदा नहीं सी रीस ही की है ना ये तर सकते असि क्यों नहीं तर सकते ते की उन्हों की हालत हुई। बाबा फरीद जी कहते उन्होंने सिर थले ते पैर उपर ते मर गए डुब गए हंसा देख तरंदेया बग्गा भयाया चाओ डुब मुए बग बपड़े सिर तल उपर पां मर गए डुब। हुण कली रीस जेड़ी है ना वो कम नहीं करदी ध्यान देना गुरु नानक साहिब बचन कर दे केवल रबी सिफ सलाह मिलाप दिया गल्लां सुन के आकाश दा मतलब ऊंचियां गल्लां सुन के कोई नीच कीट ए रीस करे महापुरशां दी के मैं भी इस पौड़ी ते चढ़ के निरंकार तक पहुंचा ध्यान देना
ਇਹ ਤਰਾਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੀਸ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਨਾਨਕ ਆਖ ਨਦਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਯਤਨ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਕੂੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠੀ ਠੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਪ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਪ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਰੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਤੇ ਆਇਓ, ਕਲ ਫਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਰੱਕ ਕੇ ਰੀਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

पवित्र मनामा बख्श करके पवित्र आशीर्वादा बख्शो पातशाह जी। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चेते आवे दातार जी चरणा कबला विखे अरदास बेनती संगत आपो अपने घरों में बैठे गुरु घर तो लाइव कीर्तन सरम करदे आं गुरु घर वास्ते बेअंत माया भेटा अरदासां करवा रही हैं रिदम खुराणा वाहिगुरु जी का शुकराना अरदा करदे आं गुरु घर वास्ते $100 माया भेटा कर दिन पातशाह सेवक दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां कार्ज रास करने स्वास स्वास सिमरन कराउणा सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आप जिया का नाम चित आवै सुख होवै नानक नाम चढ़दी कला।

काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डाउत पुन वड्डा है रहाओ साक्त हर रस साध न जानिया तने अंतर हों मैं कंडा है ज्यों ज्यों चढ़ चुभे दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम सम्मान दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर भो सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत डैल की बेला यहाँ खाट चलो हर लाया गए बसन सुहेला औद कटै दिन सुरैना रे मन गुर मिलकाज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए पिया वह एहो रस कथ कथा।

सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख ने पजाए, कई कोट पवन पानी बै संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तारे, नानक जिस जिस भावै तिस तिस ने सतारे, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बहु जोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बै रागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खो जंते, आत्मै पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अभिनाश, कई कोट मांगै सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन को हुए आप सु प्रसन्न, नानक ते जन सदा तहन तहन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई युग तकीनो बिसथार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक ओंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए आपे आप, नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तात के बेते सदा निहार, एकू नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पै सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रक्ष सुख सहज समावै, अपने जन को सास सास मारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे सलोक, करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बल हारण जलथन महियल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, ज्योतिष भावै सोई होग, खिन मैं थापो थापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊज नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वड्याई, नानक सब में रिया समाई, प्रभ पहवै मानुख गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ पहवै बिन शास्ति राखै, प्रभ पहवै ता हर गुण पाखै, प्रभ पहवै ता पतत उधारै, आप करै अपन बिचारै, दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पहवै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर ना आवै, कहो मनुख ते क्या होया वै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किश ले, ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै, भरमे भूला दैद सतावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौराज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल दैद दिस प्रगटावै, जाको अपने करै बखसीस, ताका लेखा न गणै जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास, अपने बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावण सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, ज्योतिष पावै सोई फोन थियो, कबहू ऊंच नीच मैं बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू उब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानके आप मिला वणहार, कबहू निरत करे बहुपांत, कबहू सोए रहै दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्व के हो तरवाल, कबहू होए बहै बड राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू आप कीरत में आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ रखै तिव ही रहै, गुरु प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बख्यान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीरथ इसनान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
ਕਬ ਹੂੰ।

मैं मोह परम पै पहार, दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान, आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचे तौ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप, जह पसरे पासार संत प्रताप, दोहु पाक का आपे तनी, उनकी शोभा उनहु बनी। आपे कौतक करे आनंद चोज, आपे रास भोगन निर्जोग, जिस भावे तिस आपन नाय लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगणत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सलोक जी जंत के ठाकुर, आपे वर्तन हार, नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार, आपे एक आप बिसथार। जात इस भावे तां सृष्ट उपाए, आपने पहने लय समाए। तुम ते भिन्न नहीं किश होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जियो आप बुझाए, साच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सब ताक हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख तिस कोए न मार, सो मुआ जिस मन हो बिसार। तिस ताजे अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानौ साथ। गुण निधान बे अंत अपार, नानक दास सदा बलहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपालै जीअन बहु भांत, जो जो रचियो सो तिसै त्याहात। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक कौ सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इस दे ऊपर नहीं विचार, जाकै मन बसया निरंकार। बंधन तोर पए निर्वैर, आन दिन पूजह गुर के पैर। एह लोक सुखिए पर लोक सोहेले, नानक हार प्रभु आपे मिले। साध संग मिल करहो आनंद, गुण गावो प्रभु परमानंद। राम नाम तत करहो विचार, दुर्लभ देखा करहो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ। आठ पहर प्रभु।

पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेशो, पार ब्रह्म निकट कर पेखो, सा सा सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्यागहु तरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अगन सागर तरहो, हर तन के पर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम सलोक साध के बचन, अमुलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत हो तो उधार, आप तर लोक है निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे, सरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पहे सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न पहे गुरुदेव, पूरन हुए सेवक की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही के पहमारी, प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर ना होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम शांत रिद नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पहने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बिसराम, कूट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से

बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते ऊच ताकी सोबा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी।

आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मानो। नानक गावी गुणी निदान, गावी है सुनिए मन रखिए पाऊ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया सुमाई, गुर ईश्वर गुर गो

सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए दीप लू पाताल, सुनिए पूहि न सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिए मुक्सा लाहन मंद, सुनिए जोग जुग तन भेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सतसंतोख ज्ञान, सुनिए अठसठ का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सरा गुणा की गाह, सुनिए सिख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावह राहु, सुनिए हाथ हुए सुगाहु, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का वह करण विचार, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कुए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कुए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पात स्यों परगट जाए, मन्ने माग न चल्ले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंद।

हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जोत दुपावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाऊ असंख पूजा असंख तप ताऊ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जोत दुपावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे।

असंख गल वड हत्या कमाही, असंख पापी पाप कर जाही, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे, असंख निंदक सिर करह पार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार, जोत दुपावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव संख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर पार होए, अखरी नाम अखरी शाला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिने लिखे ति सिर नाहे, जिव फरमाए तिव ते पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भाव है साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हथ पैर तन देहे, पानी धोते उतरस खेहे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए उह धोए, भरिए मत पापा कै संग, उह तो पहनावै कै रंग, उन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो जाहो, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिरुती माहु कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाइया पंडती जे हुए लेख पुराण, वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान।

ने सोई किव करे आका किव शालाई क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखण सब को आके एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुवै नानक जी कुआ पौ जाने अगे गया न सूहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कह निकवात सहस अठारह कहन कतिबा असलू एक धात

नीलनाद अनाहत जुग जुगे को वेश एक आई जुगत वे आई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जेव तिस भावै।

नीलनाद अनाहत जुग जुगे को वेश आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सुविकावार कार कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद नीलनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एक दूजी भव लख होहे लख होवै लख वीश लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मर नह जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती तिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का अख करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ानंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया न जाहे जे को कह पिछै पछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन महराम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोह करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत नंत तिथै लो लो आकार जिव जे हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला गंतप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम

हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपांज हैं, अचूज हैं, अचांज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिरेक हैं, भुजंग प्रया चंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदानी नमो देव देवे अपेकी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाते नृसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे अरपंगी परमाते समस्ति विभूते कलंकंग विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणि नमो अस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते

ं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंगि सनान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं करुणासी अनुपे अरूपे समस्तु निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदु उर्द अर्दं अगंग उगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेती अपेती अनामंग कामं समस्तो पराची समस्तस्तताम तेरा जोर चाचरी चंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रया चंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्पुंग निर्नाथे नमस्पुंग परमाथे नमस्त्वंग गंजे नमस्त्वंग पंजे नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साजसाजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वकृष्यंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा ऋद्ध सिद्धंग निवासी चरपड़चन्द्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल तर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल चंत्व प्रसाद आदि रूप अनादि मूरत जौन पुरख अपार सर्व मांत्र मान देव पेवाद उदारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर दत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेत आद पुरख उदार मूरत जौन आद असेत देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन पेक ताम नह जाए सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान तताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जा नहीं जे वेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जा नहीं के जेब तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापी जह जाप आ देवनाद मूरत आप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख अपेश अंग रंग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ भंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम वाप रूप अमीक अनुष्ट तेक पुरख अवतूत गर्भ भंजन सर्व भंजनाद रूप सूत अंगहीन अभांगनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेत सर्व शास्त्र न जान नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही बहुचित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाश

हर गाऊ मंगल नित सकिए, सोग दुख न व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभाप मिलिया करण कारण जोगो, हे शरीरा मेरिया इस जग में आए कह, क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक यो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नित्र हो मेरे हो, हर तुम मह ज्योत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया, एहो वे संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा, वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई, कह नानक नेत्र अंध से, सतगुर मिले दिव दृष्ट होई, हे श्रवण हो मेरे हो, साचै सुन नैनो पठाए, साचै सुन नैनो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मंतन हरिया, हुआ रसना रस सुमाणी, सच लख विडानी ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचै सुन नैनो पठाए, हर जीव गुपांदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौनो द्वारे, प्रगट की दसवा गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनीक, न दसवा द्वार दिखाया, तह नेक रूप नाव नव निध, किष्टांत न जाई पाया, कह नानक हर प्यार है, जियो गुपांदर रख कै, वाजा पवन वजाया, इहो साचा सोहिला साचै कर गावो, गावो ता सोहिला कर साचै, जिथै सदा सच ते आवे, सचो ते आवहे, जात तु भावहे, गुरमुख जिना बुझावहे, यो सत्सवना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावहे, कह नानक सच सोहेला सच्चै कर गावहे, आनंद सुन हो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे।

सिखना हुक्म समाए लै कना हुक्म करे विनाश। इकना पाने कट लै इकना माए विच निवास फे आखना जापे जे किसे आने रास। नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे पर गस पौड़ी न।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद

0: ओलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहत अनंत लाटू मधानी आनगा पंखी पौंदिया लैना सा सूए चढ़ पवाइए जंत नानक पौंदिया गणित नान
1: मन मन पुआई सोए पै कृत नचे सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड़ ना जाए सिद ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ पौड़ी नौ तरन निरंकार है।

0: जय कर प्यार धर्मी धर्म कर गावावे मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुक्त न जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए नानक तोलिया जापे महला पहला
1: तदि सोज गुणान का सच्चा वेखे सोई सब निशाला मारियां करता करे सोए

समेत शरीर का एक रसिक रथवा हो, जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझहता है, सत जुग रसन तो का धर्म गे रथवा हो, त्रेत रथ जत का जोड़।

0: तिनकर बामण पूरे नाद उना भी आवे हुई साध कूड़ी रास कूड़ावा पार गुड़ बोल करे आहार शरम धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे आ पारपूर
1: झटका तेड़ धोती कखाई हथुर जगत का साई नील बस्त्र पैर होए प्रवान मले धान ले पूजे पुराना पाख्या का पुट्ठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसी न जाना देख के चौका कडे कार उपड़े बटे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटाए ए अना साडा फिटाए तन फिटाए फेड़ करे इन मन झूठे चुले भरे तो नानक सच ते आई है सोच होवे तो

साध संग मिट जाई। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोय निरपो, गुर का शब्द कमाया। जीत लए ओए महा बिखादी, सहज सोहेली बाणी। कहो नानक मन पया परगासा, पाया पद निर्वाणी। वाहिगुरु टोडी महला पंजवां। हर बिसरत सदा खुआरी, तं कौ धोख कहां बेअप। जं कौ ओट तोहारी, रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना।

आवै। अंत चल गोहारी गुण निदान गुण ते नहीं गाए, जं को कृपा तारी सो सुखिया तने उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी।

तेरे सिख जेड़े ने योधे ने वो मैं कमजोर होंदे अते प्रसादी हाथी वर्गा बेशुमार कीमती पशु ही सी पावे वो भी मर गया। तुसी छड़ दियो सतगुरां छड़ दिता अकेला, पर इना लोगों ने अपनिया सौगंधा ते कैम नहीं रह पाए, धोखा किया। पिछा करके सरसा नदी दे किनारे ते बहुत नुकसान किया। एक बेनती करा, गुरु साहबां दा जिन्हां नुकसान सरसा नदी दे किनारे उस युद्ध छोटे जे विच होया, इन्हां कदे भी सतगुरां दा नुकसान नहीं हयाती विच होया। सतगुरु उदो ही कह रहे ने कि भाई धोखा खा जाना कोई पाप नहीं है, पर धोखा करना बहुत वड्डा गुणा पाप है। तुसी गुरु नानक दे घर दे मुरीद हो, तुसी जिंदगी विच कदे किसे नाल धोखा नहीं कर। अज गुरु दे पंजवें पातशाह बचन कर दे ने, उस नूं धोखा माया दा भाव कोई भी विकार धोखे विच ग्रस नहीं सकदा, धोखा लग नहीं सकदा। किन्नू जां को ओट जिन्हें गुरु दा आसरा परमेश्वर दा आसरा लैके जीवन जीवे है ना प्यारे हो, उन्हां नूं माया दा कोई भी विकार नहीं व्यापदा, उन्हां नूं कोई धोखा भी नहीं व्यापदा। इसी मरकजी भाव शब्द दा रहाओ दे पत्तों अगे गुरुदेव समझाउंदे, बिन सिमरन जो जीवन बलना। सिमरन तो बिना जेड़ा जीवन बीतना है ना, सर्प जैसे अरधारी। गुरु पंजवें पातशाह बचन कर दे, भाई उम्र भावे किन्नी भी लम्मी होवे, मैं थोड़ा सप्पां दा इतिहास हिस्ट्री पढ़ी है, एना दी भी बड़ी लंबी लंबी उम्र दे सप होए ने ते हुंदे ने। सप्पां दी उम्र बड़ी लंबी है, पर मेरे गुरुदेव वचन करदे ने करते दे सिमरन तो बिना जेड़ा जीवन बीतना है ना, ए आरजा ए जीवन ए जिंदगी सप वर्गी है, सर्प जैसे सप वर्गी आरजा। सप सारी जिंदगी गुरु के प्यारे हो जहर पैदा कर। साडे देश दे विचे एना दी पूजा वास्ते भी एक दिन मिथिया गया, सप्पां दी पूजा। इस दिन लोक सप्पां नूं दुद्ध पियांदे ने, ते गुरबाणी विच गुरुदेव सानू समझांदे भाई इन्हां नूं पावे नरोल दुद्ध पिलाओ, दुद्ध दे बदले इन्हां ने तुहानू नरोल जहर ही देना। सप जदों भी किसे नूं कुछ देगा तो जहर ही देगा। सप्पै दुद्ध पियाइयै अंदर विस निकोर, कहने हैं ना, ये कपड़ा ये वस्तु नवी नकोर है। गुरु साहब गुरबाणी अंदर फुरमाउंदे, तुसी सप नूं निरोल दुद्ध पिलाओ। ओ दिन इस नाल इस नाम नाल लोग चेते करदे नाग पंचमी, पूजा करदे ने सप्पां दी, फिर इन्हां नूं दुद्ध पिलाओ। लेकिन गुरबाणी दस रही है कि सप नूं निरोल दुद्ध पिलाओ तुहानू शुद्ध नरोल जहर देगा। एक होर बेनती करा, इत्थे इंसाना दी गल है, सप वर्गी आरजा बिताउणी है सिमरन तो बिना।

हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सब ऊपर।

मत गुरमत हर प्रभ भजिया, हर देवो दान दयाल प्रभ, जन राखो हर प्रभ लज्जिया। सब धन कहो गुर सतगुरु, गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा। भगत सरोवर उछलै सुभर।

हर हर के गुण कथन न जाहे। हर हर नाम असंख हरु, हर के गुण कथन न जाहे। हर हर अगम अगाध हरु, जन कित विद मिल है मिलाहे। हारु हर जस जपत जपंत जन, एक तिल नहीं।

हर निकट वसै जग जीवना, परगास कियो गुरमीत। हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले, जिन लिखिया

लिख छूट हम निर्गुण ले बारी सदबख सिंध सदा मेहरबाना सबना दे अधारी नानक दास संत।

हमार रखे गुर शब्द विचार्यार हाव। माया मोहे देवी सब देवा काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नाम भूले जम का दुख सहना मैं तर नाम जो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम सामर संचय माया दाम मैं धन दीजे हरे अमृत नाम। रैयत महर मुकदम सिकदार है निचल कोई न दिस संसार है। अफरियो काल कूड़ सिर मार निचल एक सच्चा सच सोई जिन कर साजी तिन हो सब गोई। ओ गुरमुख जापै ता पत होई काजी सेख एक फकीरा। वडे कहावे हो मैं तन पीरा काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा।

ठाकुर नहीं दिसै पोखर निर्विरोलिया माखन नहीं रिसै इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा नानक जी न आपको सो अपर अपार सब आपे आप वर्ता आपे परमाया गुर कृपा पे बुझी है सब ब्रह्म समाया राग गौड़ी द्वारे री महला तीजा यशपदियाय कुंकार सदगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पाओ पर मैं भूले आवो जाओ मन मुख सूतक बह न जाए जिचर शब्द न पीजै हर कह न आए रहाओ सबो सूतक जेता मोय कार मर मर जमै वारो वार सूतक अगन पौणै पानी माहे सूतक भोजन जेता किछ खाए सूत कर्म न पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सतगुर सेविया सूतक जाए मर न जन्म काल न खाए सा सिमर सो देखो कोए विण नावै को मुक्त न होए जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार कल मैं गुरमुख उतरस पार साचा मर न आवै जाए नानक गुरमुख रह समाए गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा हर जियो राखो सबदे हर जियो राखो हृदय उर तारा गुरमुख शोभा साज द्वारा पंडित हर पड़त जो विकारा गुरमुख पौ जल उतर हो पारा गुरमुख विचो हो मैं जाए गुरमुख मैल न लागे आए गुरमुख वसै गुरमुख नाम वसै मन आए गुरमुख कर्म धर्म सच होई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन पर बोधो बूझो सोई लोग समझावो सुने न कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मन मुख डंप बहुत चतुराई जो किछ कुमावे सुथाए न पाई आवे जावे ठौर न काई मन मुख कर्म करे बहुत अभिमाना बाग जो लाए बहै नित्याना जम पकड़िया तभी पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पात नामे वड्याई सार की पुत्री बिदार गुवाई नानक बिन नावे झूठी चतुराई गौड़ी महला तीजा इस जग का धर्म पढ़ो तुम पाई पूरे गुर सब सोजी पाई अथय अगै हर नाम सिखाई राम पढ़ो मन करो विचार गुर प्रसादी मैल उतार रहा वाद विरोध न पाया जाए मन तन फीका दूजै पाए गुर कै शब्द सच लिवलाए ओ मैं मैलाए संसारा नित तीर्थ नावै न जाए अहंकारा बिन गुर पेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जी हो मैं मारै गुर कै शब्द पंच संघारै आप तरह सगलै कुलतारै माया मोह नट बाजी पाई मन मुखांद रहे लपटाई गुरमुख लिप्त रहे लिबलाई बहुते पीख करै पीख तारी अंतर तिसना फिरै अहंकारी आपना चीनै बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहत परम पुलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गृह अंतर साच लिबलागी नानक सतगुर सेवा सेवट पागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस दे उपजै दे मोह प्यासा त्रै गुण भरमै नाही निज घर वासा हम हर राखे सतगुरु मिलाया अंदन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाउ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पढ़ वाद बखाण सिर मारे जमकाला तत् न चीनै बन्नै पंड पराला मन मुख ज्ञान कुमार को पाए हर नाम विसारिया बहु कर्म निर्डाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या रहता बहुत दुख पावे जाम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जमकाल नेड़ न आवै हूं मैं दूजा शब्द जलावै नामे रते हर गुण गावै माया दासी भगतां की कार कमावै चरनी लागै ता महल पावै सद ही निर्मल सहज समावै हर कथा सुने से तनवंत दिसै जुग माही तिनको सब निवै अनदिन पूज कराही सहजे गुण रवै साचे मन माही पूरा सतगुर सब सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हो मैं मार ब्रह्म मिलाया गौड़ी महला तीजा
ब्रह्मा वेद पढ़ाए वाद बखाण है अंतर ताम साप न पिछाण है ता प्रपाए गुर सब बखाण है गुर सेवा करो फिर काल न खाए मन मुखा दे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे गुर कै शब्द अंतर सहज रीते मेरा प्रपाया गुर कै शब्द बीते गुर कै शब्द सीधे सतगुर मिले प्रभ्या मिलाए मेरे प्रभ साचे कै मन पाए हर गुण गावे सहि सुभाए बिन गुर साचे परम पुलाए मन मुखंदे सदा बिख पाए हर गुण गावे सहि सुभाए बिन गुर साचे परम पुलाए मन मुखंदे सदा बिख खाए जमडंड सहै सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की सरनाई हो मैं मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई सतगुर सेवा से जन निर्मल पविता मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता इन विद कुशल तेरा मेरे मीता सतगुर सेवे सो फल पाए हृदय नाम विचो आप गवाए अनहद बाणी शब्द बजाए सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई भक्ति सीधे दर सोभा पाई नानक राम नाम वडियाई गौड़ी महला तीजा त्रै गुण वखाणा भ्रम न जाए बंधन ना टूटे मुक्त न पाए मुक्त दाता सतगुर जुग माहे गुरमुख प्राणी भ्रम गवाए सहज तुन उपजे हर रिवलाए रहाओ त्रै गुण काले की सिर करा नाम न चेतै उपावन हारा मर जम है फिर वारो वारा अंधे गुरु ते भ्रम न जाए मूल छोड़ लागे दूजे भाई अंधे गुरु से भ्रम न जाई मूल छोड़ लागे दूजे भाई बेका माता बिख माए समाई माया कर मूल जंतर परमाए हर जियो विसरिया दूजे पाए जिस नंद करे सो परमगत पाए अंतर साच बार साच वरताए साच न छपे जे को रख छपाए ज्ञानी बूझे सह सुवाए गुरमुख साच रहा लिवलाए हो

मन ही मन सवारिया पैसा सुभाए, शब्द मन रंगिया लिवलाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए। सात गुर सेविया जाय अभिमान, गोविंद पाया गुणी निदान रहाव। मन मै रागी जा शब्द भौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तरह समाए, गुरु की कृपा ते मिला मिलाए। हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा

त्रेग त्रेग गृह कुटाम जित हार प्रीत न होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर न कोए सात गुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई सदा आनंद हर नाम लिवलाई गुर मिली है हमको शरीर शुद्ध पई हो मैं तृष्णा सब अगन बुझाई बिन से क्रोध खिमा गहलाई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को विरला ले।

जाबे मन मैं करत गुमाना तबे बावर फिरत बिगाना जाबे हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कट कट चीना सह सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपना सतगुर अपना मोहे दान दीनी रहा जब किसको ए जान समंदा तब सगले किस मेला फंदा मेर तेर जा बिन चुकाई ताते संग नहीं बहराई जब इन अपनी अपनी तारी जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करना हार पिछाता तब इस ना ही किचलाता जब इन अपनो बाद्यो मोहाया वह जाय सदा जम जोहा जब इस सब इन से परमा भेद ना ही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर्मा ने भेदा तब ते धूप डांडे अरखेदा जब इन्हें कोई की बुझिया तब ते इस सब कि सूझिया जाबे तावे माया अर्थी नेत्र तावे ने तिसलाथी जाबे से होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की कीमत परी करन कराम सबके चेक आपे बुद्ध विचार विवेक दूर न नेरा सबके संगा सब कह संगा सच सलाहा नानक हर रंगा गौराट गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिसका हृदय रव्यास होए मन तन शीतल ने चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे यहाँ उहां जो काम तेरा रहा जास जप पव अपदा जाए तावत मन वहां बैठाए जास जप फिर दुख न लागे जास जप ते हों मैं भाग जास जपत वसा वै पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत तृष्णा बुझय जास जपत हर दर्ग है सिजय जास जपत कोट मिटाय अपराध जास जपत हर हो वै साद जास जपत मन शीतल हो वै जास जपत मन सगली खो वै जास जपत रतन हर मिलै बौर न छोड़ हर संग हिलै जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपते अगन न पोहत जास जपते काल न जोहत जास जपते र निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन अनहद सुनाए जास जपते निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर सब दृश्य सब ऊपर करी जिसका हृदय मन पर दे हरी अखंड कीर्तन तिन पूजन भोजन चूरा कौ नानक जिस सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का सब दृद अंतर तारा पंच जना से संग निवार दास इंद्री कर रख वास ताकै आत्मा होय प्रगास ऐसी दृढ़ता ताकै होए जाको दया मया प्रभ सोए रहा साजन दोष जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जाय सोए सहज बैराग सहजे ही हसना सहजे चूप सहजे ही जपना सहजे भोजन सहजे पाओ सहजे मिट्यो सगल दुराव सहजे हुआ साधु संग सहज मिल्यो पार ब्रह्म निसंग सहजे गृह में सहज उदासी सहजे दुबदा तन की नासी जाके सहज मन भया आनंद ताको पेटा परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा मैं आत्म रसिया ताके संग बनासी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहद शब्द वसा शब्द बजाया सहजे रुण चुण कार सुहाया ताकै कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको पर्यो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सुच धर्मा जाकै सहज भया सो जाणै नानक दास ताकै कुर्बाणै गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुरिया भोजन अनेक प्रकार भव कपरे सर पर गमन करै गे बपुरे कमन स्थान जो कबो न टराय कमन शब्द दजित गुरमत हराय रहा पंचपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी ने चल नहीं रहना सेवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिन सबताला गिरतर तरन गगन अरतारे रब सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बर त्यार भेदा सा सिमरत बिन सहगे बेदा
तीर्थ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डिंडौत प्रदा प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर कर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिन सजाए गो सगल आकारा सहि सिवत भगत तत् ज्ञाना सदा आनंद ने चल सच थाना तहा संगत सात गुण रसै अनपौ नगर तहा सद वसै भयो तह भाव परमा सोग न चिंता आवन जावन मृत न होता तह सदा आनंद अनहत आखारे भगत वसै कीर्तन आधारे पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करै ताका विचार कौन आन जस कृपा करै नेचल थान साध संग तरै गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जी दुबदा मार्ग वावे इसे मार राज जोग कुमावे रहाव जो इस मारे तिसको पौ नाए जो इस मारे सुनाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझाए जो इस मारे सुधर गए सिजाए जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतिवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस हो वै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सुने चलतनी जो इस मारे सो डपागा जो इस मारे सो आनगन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल युक्ता जो इस मारे सोई सुज्ञानी जो इस मारे सो सहज ध्यानी इस मारी बिन थाए न परै कोट कर्म जाप तप करै इस मारी बिन जन्म न मिटाए इस मारी बिन जमते नहीं छुटाए इस मारी बिन ज्ञान न होई इस मारी बिन झूठ न धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको भय कृपाल निरकृपा ने द तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुरदुबदा जाकी है मारी कौ नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हार स्यों जुड़ै ता होए निस्तारा रे मन मेरे तू हर स्यों जोर काज तुहारे नहीं होर रहाव वड़े वड़े जो दुनियादार काहू काज नहीं गावार हर का दास नीच कुर सुनै तिसका सांखे नमय उदरै कोट मजन जाके सुन नाम कोट पूजा जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट फला गुर ते बिद जानी मन अपने मैं फिर चेत बिनस जाय माया के हित हर अबनासी तुमरा संग मान मेरे रच राम के रंग जाके काम उतरे सा भूख जाके काम न जो है दूत जाके काम तेरा वट गमर जाके काम हो है तू अमर जाके चाकर कौ नहीं डान जाके चाकर कौ नहीं था बत बान जाके दफ्तर पूछे ना लेखा ताकि चाकरी करो भी सिखा जाके उन नाही काहू बात एक आपने कह पात जाके दृष्टो सदा निहाल मान मेरे करता की काल ना को चतुर नाही को मूड़ा ना को ही नाही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर प्यार जारी त्यो जीव साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिरथिया रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिष्टा मैं वास बिन सिमरन पय कूकर काम साकत बेसुआ पूत निनाम बिन सिमरन जैसे सिंह छतारा बोले कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन गर्दब की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हरकाया साकत लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत संग मिलाया कौ नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोह परम गत पाई गुर पूरा मेरी पैज रखाई गुर कै बचन ते आयो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिलया था रहा
गुर कै बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गुर कै बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर कै बचन मिटिया मेरा परम गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर कै बचन कीनो राजयोग गुर कै संग तरिया सब लोग गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर कै बचन पाया नाउ निद जिन जिन की नी मेरे गुर की आसा तिसकी कटिया जम की फासा गुर कै बचन जाग्या गुर कै बचन जाग्या मेरा कर्म नान गुर भेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा तिस गुर को सिमरो सास सास में गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी रास राव गुर का दर्शन देख देख जीवां गुर के चरण तोय तोय पीवां गुर की रीन नित मजन करो जन्म जन्म की हूं मैं मल हरो तिस गुर को चूलावो पाखा महायगन हाते हाते राखा तिस गुर कै गृह ढोवो पाणी जिस गुर से अकलगत जानी तिस गुर कै गृह पीसो नीत जिस प्रसाद वैरी समीत जिन गुरमुख दीना जियो अपना दासरा आपे मुल लियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार कल कलेस पै परम दुख लाथा कौ नानक मेरा गुर सिमराथा गौड़ी महला पंजवां मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो नाम बिना त्रिक त्रिक असने हो।

गुर की सेवा कर पिरा जियो, हर नाम ते आए मनो दूर न जाए पिरा जियो, घर बैठिया हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए, नामो बीजो नामो बीजे नामो जम नामो मन वसाए, नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए, हार का नाम मीठा पिरा जियो, जाचा खै चित लाए, रसना हार रस चाख मुए जियो, अन रस साध गवाए, सदा हर रस पाए जाहर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम ते आए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजे नामे बिनसै नामे सच समाए, नानक नाम गुरमती पाए आपे लै लवाए, एह वडाणी चाकरी पिरा जियो, तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजे किने सुख न पाए ओ पिरा जियो, बिख्या लोभ लुभा बिख्या लोभ लुभाए परम भुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी विडाणी करी दुखाली आप बेच धर्म गवाए, माया बंधन टिकै नाई खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चुकै जां गुर सबदी चित लाए, मान मुख मुग्ध गवार पिरा जियो, शब्द मन वसाए, माया का प्रमंद पिरा जियो, हर मार क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए, बिन सदगुर पाए, मन मुख आप गणाए, हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए, जिस हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए, नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए, राग गौड़ी चंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा मन बैराग पया जियो, क्यों देखा प्रभदाते, मेरे मीत सखा हर जियो, गुरपुरख विधाते पुरखो विधाता एक श्री धर, क्यों मिल है तुझे उड़ीणिया, कर कर है सेवा शीस चरणी, मन आस दर्शनी माणिया, सास सास ना घड़ी विसरै पल मूर्त दिन राते, नानक सारे ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभ दाते, एक बिनो करो जियो सुनकंत प्यारे, मेरा मन तन मोह लिया जियो, देख चल तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास, तन क्यों धीरे गुणवंत ना दयाल वाला, सर्व गुण पर पूरे फिर दोष नाही सुख दाते, हो विछुड़ी गुरियारे, बिनवंत नानक दया तारो, घर आवो ना प्यारे, हो मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा, हो सिर अर्पी ते समीर प्यारे, जो प्रभ देस देसा, अर्पिया ता सी सुसान गुर पै, संग प्रभु दिखाया, खिन माह सगला दुख मिटिया, मन चिंदिया पाया, दिन रहन रलिया करे कामन मिटे सगले अंदेसा, बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ से हम जैसा, मेरा मन आनंद पया जियो जीवा दाई, घर ला लिया प्यारा सब तिखा बुझाई, मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, समीत बंदप हर खुबजिया दूत था उगवाया, अनहत वाजे वजह घर मैं फिर संग सेज सेज विशाई, बिनवंत नानक सहज रहे, बिनवंत नानक सहज रहे, हर मिलिया कंत सुखदाई, गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे उच्चे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला, धर्मशाले अपार दया ठाकुर सदा कीर्तन गावै, जय संत जय साध संत एकत्र होवै, तहां तुजे तियावै, कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत ना

जी सब अवर सब राली मन है ता एक लेख ठाकुर जिन्हें सब कल धारिया तुद बचन गुर कै वस पिया आद पुरख बनवारिया तू आप चले आया प्रह आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुमारिया मोहन तुद सत संग त्यावै दर्श त्याना मोहन जम नेर न आवै तुद जपै निदाना जम काल तिन को लगै नाही जम काल तिन को लगै नाही जो एक मन ते आवै मन बचन कर्म जी तुद राधा से सबे फल पावै मल मूत मूड जी मुग्ध होते सी देख दर्श सुखियाना बिनवंत नानक राज ने चल पूर्ण पुरख भगवान मोहन तू सफल सन मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लाया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुसनो धन कहया तिन जम नेड़ न आया बिनवंत गुण तेरे कथे न जाही सतगुर पुरख भी मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारे गौड़ी महला पंजवां श्लोक पतित असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाप को तिन किलबे के दान हार चिंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल अराधिया जम पंथ बिखड़ा यगन सागर निमक सिमरत साधिया काल मलाय दैता सुध करता दिन सरण या राधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपा गोपाल गोविंद समाधो सिमर मना दो मोदर दुखार पाए पंजन हर आया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख मु पूर्ण मन चिंदिया पाई तमे अंध कूप से उधार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर मुन जन गुण अनेक भक्ति गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कराजन धारी करुणा में सिमरा स्वामी कट कट प्राण कट कट प्राण आधारी प्राण तन प्राण मन तन जी दाता बेअंत गम अपारो शरण योग सिमरत मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दोग मिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा सम्राट सब कल तारी गुण गाओ मना चौथे बनासी सब ते उच दयाला विसंबर दे मन को एक है सर्व कराय प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया धार है सब किस्सा है काल कंटक लोभ मोह।

सुन सखिए मिल उदम करे हा मनाय लय हर कंठ मान त्याग कर पवित्र गौरी मोह साधु मनत सखी वास आया फिर छोड़ न जाई हरीत पली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत कर तिस जनत सुन सखिए पली बिनंती अहमतांत पकाई सह सुभाए उपाद रह तो गीत गोविंद गाई है कल कलेस मिट प्रभ ना सह मन चिंदिया फल पाई है पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दस बर दर्श बरागन पेखो थान सवाए खोज लाओ हर संत जना संग समृत पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवट भागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया भ्रम खोयो सांस है स्वामी प्रकाश।

एक ओंकार सद्गुर प्रसाद गौड़ी बामन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव संबंधत सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसा गुरना गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आदि जुग आदि जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जाप उदरा गुरुदेव संकत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक। आपै किया कराया आपै करने जोग नानक को रव रहा।

द्वारं आप सुन आप सुखासन आप सुनत आप ही जासन आपन आप उपायो आप बाप आप ही मायो आप सुखम आप असूला लखी न जाई नानक लीला कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरे संतन की मन होर वाला रहा। श्लोक निरंकार अकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखानो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखियो अकारा एक सूत परो अनहारा भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल भांत कर कर है उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दुह पाते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सा भगवंत से सच संपय हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सौ सत पुरुख ते भिन्न न को सौ सरण पर जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं किछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु ए पहुचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहा पुकारते माया मोह सब कूर नानक नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तन ते उजे रोचे मनुआ तन ही बाचै सुर्ग न आचै अत प्रेत साध राज राज राचै तंदे कहा व्यापताहू जो एक छाड़ न अनकत न जाहू जा कही ये दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान। श्लोक अनक पेख अर ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो न कोए को नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनेक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कै दृढ़ सो कै सुनत कस योग न हो ज्ञानी ज्ञानी रहत आग्या दृढ़ जा कै उसनशील संसार सप्ता कै ज्ञानी तत्गुरमुख विचारी नानक जाको कृपा तारी। श्लोक आम नाय श्रिष्ट मैं बिन बुझे पस्टोर नान गुरमुख सो बुझे जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं कै को आया जन्मत मोहनी जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मैं उर तप करते सा सा सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छिडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई ये तो नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आवत हुकम विनाश हुकम आग्या भिन्न न कोए आवण जाना ते मिटै नानक जे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत ग्रवा से मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने साजन कच कहो उपाया जाते तरो बिखमे माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट न माए। श्लोक कृत कमावन सोब सोब कीने तिन प्रव्याप पासे आपन हो करै नानक बिन हर कहा कमात पौड़ी एक है आप करावन हारा आप पाप उन विस्तारा या जुग जित जित आप लायो सो सो पायो जो आप दिवायो हुआ कंट न जाने को जो जो करे सो फन हो ये कहते सगला विस्तारा नानक आप सवारन हारा। श्लोक राच रहे बनता विनोद कुसम रंग बिकसोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जहर चो तै तै बंधन पाहे जय जे बेद कतु न छूटिए सागत उकमाहे हो करत कर्म राता को पार पार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तो एऊ कर्म विकार बाध जम की जेवरी मीठी माया रंग प्रम के मोहे न बुझे सो प्रभ सदो संग लेख गणत न छूटिए काची पीत न सुध जिसे बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध। श्लोक टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग जो राते रंग एक है नान गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगह कह न को आओ बैठ आदर सब शुभ दे हुआ महली पावे तू बासा जन्म मरने होए बिना सा मस्त कर्म लिख्यो तुर जा कै हर सब पै नानक करता कै। श्लोक
लालच झूठ विकार मोह व्याप्त मुड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लला लपट लपट बिखै रस राते अम्बुद माया मदमाते या माया मैं जन्म मरना जो जो हुक्म ते वा त्यो करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जे जे लावो ते तत लगना नानक ठाकुर सदा लिपना श्लोक लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गैर गंभीर अथा दूसर नाही अवर को नानक बेपरवाह पौड़ी लला ताक लव न को एक आप वर न हो हारो सद्याया हुआ कतंग हुआ का अंत न काहू पाया कीट हस्त में पुरुष माने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीने हर सपना नान गुरमुख हर हर ते जपना श्लोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन धन धन नानक धन धन धन जन आए ते प्रमाण पौड़ी आया सबरताहु को गनिया है जास रसन हर हर जस भनिया है आए बसे साधु कै संगे अंदर नाम ते आवै रंगे आवत सोजन ना मै राता जाको दया मया बिधाता एक आवन जो फिर जो न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन होए आनंद बिन सह दूजा पाओ दुख दर त्रिसन त्रिसना बुझाए नानक नाम समाओ पौड़ी यैया जारो दुर्म दो त्याग सुख सहजे सो यैया जाय परो संसरना जे आसरे अपव जल तरना यैया जन्मना आवै सो एक नाम ले मन परो प्रो यैया जन्मना हारिय गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जा कह हीरा एक सलोक अंतर मन तन बस रह ईतूत कमीत गुरपुर उपदेसया नानक जपिय नीत पौड़ी आंदन सिमरव तास को जो अंत सहाई होए बिख्या दिन चार छे छाड़ चलियो सब कोए काको मात पिता सुती या गृह बिनता कई संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही पासेती अपने घर जाई साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बरो बहुर न आया श्लोक आत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी तनवंत मृत कैया नानका जय प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खट शास्त्र होए ज्ञाता पूर्क कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीरथ स्नानी सोम पाक पर सुदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कुछ किनो सो अनेता हुआ ते उत्तम गनो चंडाला नानक जेह मन बसै गोपाला श्लोक चार कुंट दह दिस प्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कका कारण करता सो लिखो लेख न मेटत को नहीं होत कछ दो बारा करना हार न भूलन हारा काहू पंथ दिखा रहे आप काहू ध्यान प्रमत पछता पै आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सु नानक लीनो श्लोक खाद खर्चत बिलछत रहे टूट न जाए पंडार हर हर जब तनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं ते समरथ कह पाहे जो देना सो दे रहो पावै तै तै जाहे खर्च खजाना नाम तानिया भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जापत रहा गुणसास खेलै बिकसै आनंद स्यों जाको होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद ना दुख ना डांते जाको नदर करी नानक जो प्रपाणिया पूरी तिना परी सलोक गान मिन देखो मनाए माहे सर पर चलनो लोग आसनित गुरमुख मिटाए नानक नाम है रोग पौड़ी गंगा गोविंद गुण रवो सास सास जपनीत कहा बिसासा देखा बिलम न करे हो मीत न बारक न जोब न बिरधि कछ बंद न बेरा न भूजी है जो आय पर है जम फंद ज्ञानी ज्ञानी चतुर्पेख रह नहीं ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड रहा लिपटाए मूड तहा लपटाए गुर प्रसाद सिमरत राय जाहु मस्तक भाग नानक आए सबल ते जाको प्रिय सुहाग सलोक कोके सास

छजा चूरन मिटे तुम्हारो राम नाम सो कर व्यवहारो चूर चूर साक्त मुआ जा कर दह होत पाओ बिया चरक समल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ चरक काम करो दृष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई श्लोक यतन करो तुम अनेक वेद रह न पाव मीत जीवित रहो हर हर भजो।

भेद सही चेत झूठो माया रंग ज्ञानत सोई संत सोए भ्रमत की चित भिन्न अंध कूप ते कडो जे हो सो प्रसन्न या कह सम्रात ते कारण करने जोग नानक ते उसत करो वाहु की ओ संजोग। सलोक टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख जपाए नानक मनो न बिसरै गुणित गोविंद राय पौड़ी टहल करो तो एक की जाते वृथा न कोए मन तन मुख ही है बस है जो चाहो सो होए टहल महल ताको मिले जाको साध कृपाल साधु संग तो बस है जो आपन हो।

बार थित पाव गोविंद भजो संतै की सिख ले हो प्रीत करो सदेख स्यो आसा चाय स्ने हो कारण करन कराम नो सब दे कह हाथ जित लावो तित लगाए नानक जनते अनाथ। श्लोक दास एक निहारिया सब कछ दे मनहार सा सा सिमरत रहै नानक दर्शया पार। पौड़ी ददा दाता एक है सबको देवनहार दें दे तोट न आवै अगंत परे पंडार दैनहार सजीवनहारा मन मूर्ख को ताहे बिसारा दोष।

कोटि अपराधु अमृत नाम जप मिल साधु पर पच त्रो मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पातशाह शतर सिर सो नानक दूसरे अवर न को सलोक फाहे काटे मिटे गमन फतह पई मन जीत नानक गुरते थे तपाई फिर न मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तो आया दुर दुर्लभ देहे काल युग में पाया फिर अवसर चरण हाथा।

बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल सुख संभव भोग रस नानक सादरवाल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा बीरा अपन बुरा मिटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बाद आपन हो बंदा दोष दे त्याग को बंदा बातचीत सब रही सियानप जिस जना वो सो जाने नानक सलोक पय अंजन अग दुख नास मन अराध हरे संत संग जे हृद बस्यो नानक ते ना भ्रमे पौड़ी बब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमेश सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परमानुख डहकाए दुतर बहा बिखमे हिमाए गुरमुख परम पै मोह मिटाया नानक से परम सुख पाया सलोक माया डोले बो विधि मन लपट्यो ते संग मागन ते जे तुम रखो सो नानक ना मै रंग पौड़ी ममा मांगन हार के आना देन हार दे रहो सुजाना जो दिनों सो एक बार मन मोर कर।

0: लोक मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जे जान्यो प्रव्यापना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मरम पछाना भेट साध संग पतियाना दुख सुख हुआ कै समत बिचारा दुख सुख हुआ कै समत बिचारा नरक सुरग रह ते उतारा ताहू संग ताहू निर्ले पा पूर्ण घट घट पूर्ण बिसेखा हुआ रसमय वाहू सुख पाया नानक लिप्त लय नहीं तह माया। श्लोक यार मीत सुन साजनो बिन हर छूटन नाहे नानक तह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे। पवड़ी ये या जतन कर तब विदिया एक नाम बिन कौ लो सिदिया याहू जतन कर हो छुटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरन तार सब को वाहे जपे बिन उबर न हो याहू तरन तारण समराथा राख लेहो निर्गुण नर नाथ मान बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। श्लोक रोस न काहू संग करो अपने आप विचार हुए न माना जग रहो नानक नदरी पार। पौड़ी रारा रेन हो सब जाकी ताजो मान छुटे तेरी बाकी रान दर गए तो सी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाए बिकारा गुरपुर कै समझ अपारा राते रंग नाम रसमाते नानक हर गुण की नींदाते। श्लोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही मैं बास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास। पौड़ी लला लावो औखद जाहू दुख दर से मिटै खिनाहू नाम औखद जय हृदय हितावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है पाई गुरपुरै बिन बिद न बनाई गुरपुरै संयम कर दिया नानक तो फिर दुख न थिया। श्लोक वासुदेव सर्वत्र मैं उन न कथ उठाए अंतर बाहर संग है नानक काय दुराए। पौड़ी वबा वैर न करिय काहू घट कर अंतर ब्रह्म समाहू वासुदेव जल थल में रव्या गुर प्रसाद बिर लही गव्या वैर विरोध मिटे ते मनते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चिहन सगल ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बिहानिया साकत मुगद अजान अड़ाड़क मुए ज्यो त्रिखावंत नानक किरत कमान। पौड़ी अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटे संग साधु कर्म धर्म तत नाम राधु रूडो जे बस्यो रिद माही वाकी डाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत साकत गावारा जे ही है अहम बुद्ध बिकारा अड़ाड़ा गुरमुख डाड़ मिटाई निमख माए नानक समझाई। श्लोक साधु की मन उठ गौ सियाण त्याग गुर दिख्या जे मन बसै नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससासरन परे अभारे शास्त्र सिमरत वेद पुकारे सोध सोध सोध विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सा सा संपूर्ण हारे तुम समरथ अगंत पारे सरन परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला। श्लोक खुदी मिटी तब सुख भय मन तन भय अरोग नानक दृष्टि आया उसत करने जोग। पौड़ी खखा खरा सराहो ताहू जो खिन मैं उन्हें सुबर पराहू खरा निमाना होत परानी अंदन जापै प्रभ निर्माणी भावै खसमता हुआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगनता असंख खते बिन बिकसनहारा नानक साहेब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परो हर राय उक्त सियाणप सगल त्याग नानक लय समाए। पौड़ी ससा सियाणप सा छाड़िया ना हुकमत हिकमत हुकम ना प्रभ पति आना सहज पात कर है चतुराई संग तुहारा एक न जाई सो सो जब दिन राती रे जी चले तुहारा साथी साध सेवा लावै जे आपै नानक ताको दुख न व्यापै। श्लोक हर हर मुक्ते बोलना मन उठै सुख होए नानक साहब मैं रव रया थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो घट घट सगल कै पूर रहे भगवान होत आए सद सदीव दुख भजन गुर ज्ञान हो छुटकाए हुए नंद ते हो नाही तै आप हते दुख जन्म है मरण संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संत संग होत कृपाला उरा कछु न किन्हो किया नानक सब कछ प्राप्त हुआ श्लोक लेखा कतै न छूटिया खिन खिन भूलनहार बसनहार बसलाए नानक पार उतार पौड़ी लूण हरामी गुनहगार बेगा ना लप मत जियो पिंड जन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण तह दिस टूटन जाए देवन हार दतार प्रभ निमख न मन बसाए लालच झूठ बिकार मोह या संपै मन माहे लंपट चोर निंदक लंपट चोर निंदक महा पिन्हों संग बिहाय तुद भावे तां बक्सलाए खोटे संग खरे भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक भावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे सलोक खात पीत खेलत हस्त परमे जन्म अनेक भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी खेलत खेलत आयो नेक जून दुख पाए खेत ठाकुर भई आनंद खेत खेद मिले साधु मिलत सतगुर बचन समाए खिमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर पई नानक सुख विश्राम खेप निबाही बहुत लाभ घर आए पतवंत खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत आपन किया करे आप आगे पाछे आप नानक सो सराई है जे घट घट रहा ब्याप सलोक आए प्रसन्नाती कृपा ने दयाल एक अखर हर मन बस नानक होत निहाल पौड़ी अखर मैत्री पवन प्रवतारे अखर कर का भेद विचारे अखर शास्त्र सिमत पुराना अखर नाद कथन वख्याना अखर मुख जुगत पै भरमा अखर कर्म किरत सुच धर्मा दृष्ट मान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म निरले पा श्लोक हाथ कलामे अगामे मस्तक लिखावती उर्ज रहो संग सब संग रूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुख तुहारी मोही देख दर्श नानक बलिहारिया पौड़ी हे अचुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूर्ण हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हैपी होमन हार हे संत कै सदा संग निधार आधार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं को नानक दी जय नाम दान रख हो या परो सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंदब सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत्र निरोदरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आद युग आद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जाप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी चित लाग तरा गुरुदेव सात गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा एहो सलोक आदि अंत पढ़ना गौड़ी सुखमणि महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सात गुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन मैं मिटावो सिमरो जस में संभर एक नाम जपता अगणता नेक वेद पुराण सिमर सुधाखर कीने राम नाम एकाखर किनका एक जे जी बसावे ताकि मैं मांगनी न आवे कांखी एक कै दर्श तुहारो नानक उन संग मोय उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जन कै मन विश्राम रहाओ प्रभ का सिमरन गर्भ ना बसाय प्रभ का सिमरन दुख जम न सह प्रभ का सिमरन काल पर हराय प्रभ का सिमरन दुश्मन डराय प्रभ सिमरत कज बिगड़ना लाग गए प्रभ कै सिमरन आन दिन जागे प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निधान नानक हर रंग ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੋਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸਿ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੇ ਸੁਝਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧ ਮਾਇ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੋਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ
1: ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿੰਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿੰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿੰਨ ਅਨੰਤ ਕਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਦਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਭੂ ਨਾ ਚੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਚਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਅਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪੈ ਸਜ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰ

नानक के प्रभु साथ। अष्टपदी। जय मात पिता सूत मित न पाई, मन उहा नाम तेरा है संग सहाई। जय महापयान दूध जमदलै, त केवल नाम संग तेरा है चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। अनेक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंद न पर, हर का नाम जप तो निस्तर। अनेक माया रंग तेख न बुझावे, हर का नाम जपत अगावे। जे मार्ग एहो जात अकेला, तै हर नाम संग होत सहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याग्या, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नाही कोट लखबाही, नाम जपत तह पार पराही। अनेक बिगन जय आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार। अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कबू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाये साध के संग। जह मारग ते गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जह पैड महा अंध गुवारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सजानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जय महापयान तप्त बहु काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहा त्रिखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर का नाम उदर जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन का हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन तीनो दान। मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कै व्रत बै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न पंग। हर का नाम जन की बढ़ियाई, हर का नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बह करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते हो हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद्वस, संत प्रताप दुर्त सब नस। संत का संग बड़ भागी पाई, संत की सेवा नाम त्याग। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक। बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्ब टटोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हमें बहु रतना। शरीर कटाए हमें कर राती,
वर्त नेम करै वह पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवे, महा उदास तपीसर थीवे, अगन माहे हो मत प्राण, कनक अस हैवर भूम दान, न्योली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हों मैं मैल न जावे, हर के नाम समचर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देह छुट्टे, गर्व गमान ना मानते हुट्टे, सोच करै दिन सो अर रात, मन की मैल ना तनते जात, इस देही को बहु साधना करै, मानते कभू ना बिख्या टरै, जल तो वह बौदे अनीत, सद कहा होए काची पीत। मन हर कै नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, बहुत स्याणप जम का भौ व्यापै, अनेक जतन कर त्रिसन न त्रापै, वेख अनेक अगन नहीं बूझै, कोट अपाव दरगह नहीं सजै, छूटस नाही उब कयाल, मुहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तल नहीं मानै, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सहज सवाए, चार पदार्थ जे को मागै, साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए हमै छोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरनी परै, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मह पुरख प्रदान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गन्या सब ते ऊंचा, जाका मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, देखै सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन संग रिश्तेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्तन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देव हो दान, कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटा कै अंतर जामी, अपनी गत मित जानो आपे, आपन संग आप प्रभर राते, तुमरी उस्तद तुमते होए, नानक अवर न जानस कोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हरिया, सगल उद्दम में उद्दम पला, हर का नाम जपो जीव सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते हो उत्तम थान, नानक जय तक वसै।

अस्पदी रम्या के गुंचेत प्राणी कवन मूलते कवन दृष्टानी जंतु साज सवार सिगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोवन भोजन सु

बाहर पेख अंतर मल माया, छपस नहे कछु करै छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ स्वान। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरे अथा। जाके अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहो ओढ़ निभाव है। कह बुझारत बुझै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा। कहा पिसन पद गावे गुंग, जतन करे तो पीसर पंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करना मैं दीन बेंती करै।

बलुआ के ग्रह पीतर वसै, आनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मानै मन है प्रतीत, काल न आवे मूडे चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालो त्रो। याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लिहो आपन कर कर्म। तू ठाकर तुम पह अर्द।

चई बिन नामे पत जाय। अष्टपदी दस बस्त ले पाछे पावे, एक बस्त कारण बिखोट गवावे। एक पी ना दे दस पी हर ले, तो मूड़ा को कहा करे जिस ठाकर सो नाही चारा। ताको पीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभु मीठा। सर्व सुख ताहू मन बूठा, जिस जने अपना हुक्म मनाया। सर्व थोक नानक तन पाया, अगंत साहो अपनी देरास। खात पीत बरत आनंद उलास, अपनी अमान कछ बाहर साहो ले। अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे। बहुत

संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्प को है, मिथ्या नेत्र पेखत पत्र्या रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार कौता है,

मिथ्या सब पै सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आर्जा साच बिना कह होवत सुच्चा। बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जीवन कृपन के निरार्थ दाम। तन तन ते जन जह कट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत मन ही प्रीत मुखय गंड लावत। जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू पीन। अवर उपदेसै आप ना करै आवत जावत जन्म मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार। जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उंजन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने। आपे आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रिहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमख

अष्टपदी। जे प्रसाद छति ही अमृत खाए, तिस ठाकर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लाभ है, तिस को सिमरत परम गत पाव है। जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिस है त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। जह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जह प्रसाद पाठ पटंबर हडावे, तिसे त्यागत अवर लुभावे। जह प्रसाद सुख सेज सोई जे, मन आठ पहर ताक।

तुझ सब को माने मुखता को जस रसन बखाने जह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप्त दरगह मान पाव है नानक पत से ती कर जाव है जह प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लाभ होत से राम सनेही जह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके जह प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जह प्रसाद पाई द्रव देहे नानक ताकी भगत करहे जे प्रसाद आपुखन पहरीजे मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे जह प्रसाद असभ हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कभू ना विसारी जह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिस है त्याई तिस है त्याए जो एक अलख है ईहा उहा नानक तेरी रख है जेह प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जह प्रसाद तू आचार व्योहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जह प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जह प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जह प्रसाद सुनह कर नाद जह प्रसाद पेख है विस्माद जह प्रसाद बोल है अमृत रसना जह प्रसाद सुख सहज बसना जह प्रसाद हस्त कर चल है जह प्रसाद संपूर्ण फल है जह प्रसाद परम गत पाव है जह प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गर प्रसाद नानक मन जागो जह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल ना मन हो विसार जह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जय प्रसाद तेरे कारज पूरे।

साधकै संग पाए नाम रतन, साधकै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिले, साध कै संग सदा पर फुले। साध कै संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पंचा। साध संग हुए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहूं तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध कै संग माया ते पहना,

ताप साधक संग तज सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध के संग न कभू पावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त अगोचर लह साधु के संग अजर सह साध के संग बसे थान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है साधु के संग सो तन पावे जिस तन ते सब को विरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सो वासुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कछु काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुखत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहा उहा सहेला साध संग बिछड़त हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग ना व्यर्था जावे पारम साध रिद बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुन्यो हर नाओ साध संग हर कै गुण गाओ साध के संग ना मनते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे साध के संग लगे प्रभु मीठा साधु के संग कट कट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जान है जेता सुन है तेता बखियान है साध की उपमा तह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंच।

ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, पार ब्रह्म की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक

ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाया है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खुजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाखर। ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ को नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार,

श्लोक और तारे जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओहो अपरस सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पत्रया रूप न पेख है नेतर साध की टहल संत संग हेत करन न सुने काहू की निंदा सत्य जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद भिक्षा पर हरे मन की बासना मानते टरे इंद्री जत पंच दोखते रहत नानक कोट मदय को ऐसा अपरस वैष्णु सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विषन की माया ते होए पैन कर्म करत हो वह नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावे नानक ओ वैष्णो।

नानक हो पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तै साथ ननाओ आपे कर्ण करावन जोग प्रभ पावे सोई फुन होग पसर्यो आप होए अनंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगा

प्रवरची बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन परम है उदासी, कई कोट वेद के सोत्रे, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यानता है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है,

कृपन कठोर कई कोट अपग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब कोहरे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया शर्मा है कई कोट परदेश परमा है जित जित लाभ हो तित तित लगना

सत्तर, कई कोट देव दानव इंद्र सर छत्तर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस्तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट का नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जह किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, साते नेरे सभूते दूर, नानक आप अलिपत रिहा परपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बौ जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत।

नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यार।

आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत की नो विस्तार, कई बार पसरो पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट की

रस पीव है, अमर भय सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास मारे,

में अनित रंग परेकार, कर कर देखे अपनी बडियाई, नानक सब मैं रिहा समाई। प्रभ पावे मानुख गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन सास ते राख्या, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे।

दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा ना गने जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूरन ब्रह्म प्रकाश, अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योत सपावे सोई फनथियो, कभू ऊंच नीच में बसै, कभू सोग हरख रंग हसै, कभू

रहे दिन रात। कभू महाक्रोध विकराल, कभू सर्व की हो तरवाल। कभू होए बह बड़ राजा, कभू पिखारी नीच का साजा। कभू अपकृत मह आवे, कभू पला पला कहावे। जो प्रभ राखे तिभी रहे,

अनेक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभ पावे तिवे नचावे जोत सपावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कभू साध संगत इह पावे उस स्थान ते बहर न आवे अंतर होए ज्ञान परगास।

बन बांत सो होवत विष्टा का जांत। आपस को कर्म वांत कहावे जन्म मरे बहु जोन परमावे। तन भूम का

सागर बावे, तृण समान कछ संग न जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल पीतर ताका हुए विनाश। साते जाप जाने बलवंत, खिन महें हुए जाए पसमंत, किसे न बद्दे आप हंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सोजन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनेक तपस्या करे अहंकार, नर्क स्वर्ग फिर अवतार, अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह को कैसे गवे, आपस को जो पला कहावे।

जब लग जाने मुझते कछ होए तब लग तब इसको सुख नाही कोए, जब यह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता, जब तारे को बैरी नीत तब लग नहीं चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छुटे, सहस खटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनेक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ वृथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्रा

का बहर बहर अवतार। संत कै दुखन आर जा कटे, संत कै दुखन जमते नहीं छुटे, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मह पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन सो बाते हीन, संत कै हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन कै दुखन काग ज्यो लवे, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिग्ध जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जले, संत कै दुखन सब को छले, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का ठाव को नाहे, नानक संत पावे ता ओए पी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हतियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा वियोग, संत की निंदा दुख में दोख, नानक संत पावे ता उसका पी हुए मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे।

संत का दोखी अद बीच पे टूटे, संत का दोखी कितए काज ना पहुँचे। संत के दोखी को उद्यान परमाइये, संत का दोखी उजड़ पाइये, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना

नानक संत भावे भावे ता लै उबार, संत का दुखियों बिलाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यों पावक इदन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला ज्यों बुआड़ तिल खेत महे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदका तुही पया नानक जोत सभावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइये संत का दुखी ना मरे ना जीवाइये, संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख ना तिरस्कै कोए जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत ना मिटै कोए नानक जाने सच्चा सोए, सब कट तिसके उह करने हार सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे तिहाबो।

हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय। अस्पदी मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक कै भगवान। जिस कह दिए रहे अकाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। मारे राखे एको आप, मानुख कै किछु नाही हाथ। तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पी।

सर्वण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, इत उत की ओहो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या।

साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अंधन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की।

को हर प्रभ मंचित आवे, सो संत सहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया।

ना किछ मरे, आपन चलत आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मह आप, अनेक जुगत रच थाप उथाप। अविनाशी नाही किछ खांड, तारण तार रिहो ब्रह्मांड। अलख अतेव पुरख परताप।

जैसनो कृपा कहे बड़ पागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान। जो किछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग, सहज सुभाए हुवे सो होए।

जाकै सिमरन उदरियै नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए। जिस तिस बिन नाही तेरै किछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है।

का शब्द मन अस्तमन जो पाखाण नाप चढ़ तरह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरह जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास जो महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तूत सहच तार जो कछ करे सोई सुख मान पुला कहे फिर है अजान कौन बस आई तेरा संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत से ती कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज विमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय मह तोल लाद खेप संत है संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उज्जल हर दर गह सोए इहो बापार विरला बापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़ पागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनेक विघ्न ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे।

का जिस हो वैसो परसन्न। अष्टपदी। अब नासी प्रभ मन मह राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। तिस्ते पर नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर धीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दया।

सरना जोग जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र पूर, तिसका मंत्र ना जाने होर। अनग रूप मंगल सज्जा कै, सर्व थोक सुन्य है करता कै। राज महराज जोग मह जोगी, तप मैं तपी सर गृहस्थ मैं भोगी। त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जाकी लीला कीमत नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म कै जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्यावे से। तै गुण में जा को फरमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना

नाना विध कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पूरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन।

तन मैं नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम। बोलो जस जी बादिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करह भक्त आत्म के चाय, प्रभ अपने सुर समाए। जो हो आहो बसो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखाने, और तिसका गुण कह एक न जान कानो। आठ पैर पर वसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सोजन सर्व थोक का दाता, तिसकी शर्म सर्व सुख पावे, तिसके दर्शक पाप मटावे। अवर से आन बछगड़ी साड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जाव न हो भी तेरा, नानक तिन जन के पूजो सद पैरा। सलोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग से खुदरे, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिक्की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिक्की गुर दुरमत मिल हरे, गुर बचनी हर नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़भागी हे। सतगुर सिख का हल्त पल सवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे, गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कछु न जनावे, हर नाम हृदय सत्य आवे, मन बेचे सतगुर के पास, ते सेव के कारज रास। सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत परापत स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक की गुरमत ले। बीस विस्पे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्वदान जी का दाता, आठ पैर पारा पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म जन जन मह पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम। सहज से अन पढ़े न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइए, सफल दर्शन पे खत पौनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गय कवे, सुनकर बचन कर्ण अघाने, मन संतो खातम पति आने। पूरा गुरख्यो जाका मंत्र, अमृत दिष्ट पेखे हो संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लए मलाए। जिहबा एको सत अनेक, सतपुरख पूरन बवेक, काहु बोल न पहुंचत प्राणी, गम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहर निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनक भक्त बंधन नित करे, चन कमल हृदय सिमरै। सतबलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुर का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच पदे सेवक को दे। मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक परगासे, नानक परम वो धूप तहते नासे। तप्त में ठाढ़ बरताई, अनंत प्या दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण अपदेसे। पौचू का निरपा होय वसे, सगल ब्याद मनते खै न से, जिसका सतन कृपा धारी, साध संग जप नान मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सो नानक हर हर जस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सकदी मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमते आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोई, सर नरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रकाश साध के संग, रच रचना अपनी कलतारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक केतन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर पाप सब मीत विसारो, चरण कमल रिद मह उतारो। कर्ण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ गहो नाम हर वथ, एह तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक बैठ जाए, जिस तन को चार कुंट को उठतावे, सो तन हर से बाते पावे। जिस सुख को नितवा छे मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सुबा को करे परी करनी, सा सोबा पज हर की सरणी। अनकपा भी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवगत लाए, सर्व निदान में हर

सब कुटुंब से हो तिन पेछे सब जगत छड़ाए जिन नानको हर मेल जन तिन बेख बेख हम जीवाए। महला चौथा सत अर्थ पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पए हरिया।

ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। कहते हैं ऐसे गुरु को सानू बलहार जाना चाहिए जिसन नारायण नरपत नमस्कार, सारा ब्रह्मण उस नमस्कार करता है, उसनु पूजता है, उसका ध्यान करता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह अपने इस पावन शब्द राही सू समझा करते हैं कि भाई जी की व्यथा होए सो गुरु पहे अरदास कर। जब भी कोई गल होवे तेरे मन के अंदर, तू गुरु दे कोल आके बैठ के उस अगे अरदास करनी है। वो इना समर्थ है कि तेरे मन की बुझ के ते मन की पूरी भी कर देगा। ऐसे गुरु तू अपन बलखार जाना चाहिए, आप मुक्त मोहे।

मन नू जे कोई सकून शांति दे सकता है वो महाराज दा नाम है। और ऐसी कोई पावर नहीं, ना पैसा, ना पदार्थ, ना तन दौलत, ना शोहरत, जे तेरे अंदर कोई चैन ते टिका बख्शिश कर सकता है वो सतगुरां दा नाम है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। महाराज कह रहे ने तेरी आत्मा दी, तेरे जी जी जी दी जिहो जी भी इच्छा रब ना करे कदे कोई औखा समा भी होवे ना तां भी अरदास कर। अक्सर लोकी दुखां विच ही अरदास करदे ने, सुखां विच ते सतगुरु कह रहे ने दुख तदे जा विसर जाए। दुख तां आउंदे ने जदों तू उहनूं भुल जांदा। वड्डियां वड्डियां खुशियां विच फिर आपां शुकराना भुल जांदे। ऐसे ऐसे परिवार भी मौजूद ने। अपनी बेटी दी मैरिज है, ब्याह है, पर प्यो सारी पार्टियां सारे रिश्तेदार छड़ के अपना नेम निभाने चले जाता। सारे रिश्तेदार कहंदे ने किथे चलिया गया, ते जिहड़े जाणदे सन ओह कहंदे ने भी दुनिया इधर दी इधर हो जाए उन्हें नेम नहीं छड़ना। अपनी बेटी दा ब्याह है पर नेम कुछ समय लई मिलन वास्ते अपना नेम निभाउण चले गए। जदों आए ते पुछया तुसी किथे चले गए सी, ते फिर हाथ जोड़ के नीवी पा के कह दिता जिसने ये खुशियां दित्तियां उहदा शुक्र करन दिया सी, जिन्ने ये विद बनाई उहदा शुक्र करन गया सी। सतगुरु कह रहे ने कल्ला खुशियां दा मौका ही नहीं, कल्ले पदार्थ ही नहीं, मन नू भी ऐसी बख्शिश मिलती है इंज लगता है भी तू ही बादशाह है, तेरे नालों सुखी कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई होर नहीं, जेड़ा सबर चैन तेनू मालक ने दिता वो किसी होर को नहीं। एक बारी पावन पंक्तियां कह दियो सारे, मिलदा पता कितों है, सो लगा सतगुरु सेव जाको कर्म तुर, जिन्हां दे कर्मां विच लिखिया होया है सतगुरां दी सेवा, सतगुरां दे बचनां नू जिंदगी विच कमाउणा।